0: Hello, Kamsan, tell her show me now.
1: Hello, Guru Digi.
0: Listen, Lolo, Guru La Shima, Dinky Nina, Nina.
1: Kila Togo Shigatan Digi.
0: Listen, Lolo, Guru La Tilly Tena, Leshun and Jay, Kiran Kama, you see, be soon see this of you now.
1: Kiran Kaba, you see, be soon here, Nibutina, Tango in the Nyapuni, the Zegate, the home, Yanja Sola Check, Git Domalai. ऐसे के तो तो चला निजन सुंग ले तो इन्हें इन्हें तो हम लेते थे इन्हें यार तो यार तो यहाँ तो हिम्मत शुरू किया
0: लेस तो चेना ला
1: तेरे के ला ठीक ना चाची पहले शुभी पामा बंजे नमला पे ये ला ते ये के जी कुरी ये के पुले दस ने रो थोड़ा सा कुनाज समझी जी शुरू
0: लेसे ना ला
1: लेसे ते थोड़ा जी ये ला ते ये की योंगो थे जे इन इन्हें Susu Pini, Susu Namurna Shijila.
0: Call you Zander Tonana Ronasral.
1: Listen,
0: Lolo.
1: Listen, that in Rajila, Sunda Tumbuzipuna Hercheta, that Sunda Mobu Kamusan.
0: Listen, Lolo, three Kirange Sunda Hrinala.
1: Kelain Tatogon Resala Parina, Tasunda Dwarfing Midnight in this.
0: Tamunam, listen, Lolo.
1: हमें तो फिर शो जेगी ना या जेगी ना तो आसमी ना
0: नेस तो जेना ना ना
1: ऐसे अन्ना लेंगे नहीं सेना ना
0: नो तो जेना
1: ऐसे हल्लो सिक्के यंगा ये माता दुगा यंगा देजी का यंगा दुयो सुगो दिने का जंगांग दाजा जिके दंबा तोजे सिंबुती ये निके गुलो निरी निये बगा तंगु चंजु जिके स्वासु को तू जेने के चंगी ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ 이게 템바 마다가신 연락자 뒤 이게 템바 타라지게 주만다 안도고 야이게 또 고베땡게 게 이시게지게 칸도 딩안나만지게 롱딩게지게 신현도 고 유디 저도 고악바가 수이도 오와가 땅 아깔에 온보 저도 다 오와가 수이게 또 오와가 땅 아갱근이에지게 부적고 수고 수이도 내가 하장 소모나 마두지가 두고 수이도 시에네가 칸도 딩안나만지게 가도 엘리바가시게 자네가 주만다 안도고 내로 numa budariya ye ge khandu kondu onama tingna diya ye ge shashiya ne ge zuma da du ge yudi chedo guo ba ga ngai to o ba ga tang ga la ombo chedo guo ba ga ngai to o ba ga tang ga ngu ni ye ge phu za gu su ga ngai to shiya ne ge ne zo onama budariya ye ge khandu kondu onama tingna adiya ye ge shashiya ne ge zuma da du gu ye ba tham si ye nama gum je ga tang a yum tham si ye nama zaman ye ne ge po da ka she ga ji ge jian du ga da de wa na cha bi wa la shu ji
2: 那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢那是他现在呢
0: tiling li tina shu na jayi na titi shubi. Kiran kaba yu sip di soya pinyi na?
2: Lede, tang tama di li zeng su chumba gen, ki tuma la da gen, jen su la, shabati su nang gen, tawa trishila, la chel bu she yin la.
0: Lese, lo lo?
2: Lese, tine, nung di sento su la, zem di shu shu, da kiba chala ma yin, jen rung di su, zem di su tu ma sun de.
0: Lese, lo lo?
2: Kide pa yu jesu zong zong di jang, rin di tong su shu, kama tun ji da toku tong mo. Nungjiki sento u beja la, ta u tenzi tindu la, tak du kiba cheri to na zendu na, gaten je shu tu yin la.
0: Lo lo?
2: Kangjung gaji ning sokku toksa mi maa ondi la zo nangwa tato nambal henge ta. Tanya ning sokku sunam zon la zo nangwa chongmi nambal henge. Shiga zinyayang sokke sokku toku tawa ngudu la zo nangwa chongmi nambal henge chel buche yin. Dini takdo shiga zinyayimbe po chungzi la cheri toana samti nang gatin shi shuchu yin la.
0: Nisi.
2: Tena kongla shi nangye tingi kuru la ta tingi tema choki la chel buche yin la. Tini namiru shuge nima kyabu la ta tundu la. lokar yugo sunam dachi la zona sunam dawala tawanjin la ta tawatri la chel buje in la tine chuju yugo pochong da la buje in pochong da la kuna bolo tobon song da hat biti tindul to senaro na shi in la
0: lo lo
2: e kangma ke no ki wendu jabla ta kangma ki julu la ke jang de tembu ri de ki simbu mema to la chel buje in la tine nung ji sendo sangma sen reje ri ni betu ma su gomba ma su shi in da ta tu kuba talam jenge sandu tu minul
0: lo lo le se
2: le de ken la kuji ni kuju nango la tene sento sangma le sandu nandu dane de sunje mo ti ta sandu mang da nanga ina kini kamba sunje mo ti ta sunje nanga na sandu ni ngwe na ro na kuju ni sento sangma sento mang ti gi le de na kuju to se de ni
0: ji ji la le se
2: le de ken la ni kuju nango
0: no je din ja wo
2: ni tene
0: No, Sinolingian Anansu, Sentro, Kuntala Moshu, Yube, Sunam Chunjola, Talesaya, Shun Yube, Binjula, Shigzil Hatine, Benim Yesala, Ta, Shigzil Shun Yube, Tichundala, Gazine, Be Pujula, Ta, Shigzil Yube, Kurula, Dine, Gazaya, Shu Yube, Denzin, Jubla, Hunansu, Sema Guce, Demo Mulang, Elena, Bekiran, Kamayu, Sime, Sunshe, Dirigushu, Pamunji, Ta, Ganilwaling, Getoya, Puje, Mundu, Samutumanaso. 那发生在那个区，可以这边讨论的学生男子是不是成都空间呢？呃，这一呢蛮大几呢，阳光阳光些孤僻的空间呢？啊，伊拉看不上这里呢？啊，罗仁苏伯啊，他罗仁西伯罗仁阿伯基，卢主基旧的当时有这个拉人家了伊呢，学校伊呢，卢主处理呢，学校不需要伊，他才拿是济南下了。 那某天呢，俺去新创忙不及跟伊那看的参加股票那些，突然呢，许个他，今天俺去新创空气成名了生死无常事体难度，伊拉看不上，可能去领着呀，小月呗，超过那么天个创业，对不？因别些看的参加许个人，今年新一的超过那么天个做，突然那么呀，第几批送超过样本，面对呢，因为呢，许个人数那些了。 那今天没提前呢，拖着到就是这边成都空气，那早就你收不得了。啊，平常龙天年这里忘记了，这里是阳历，那古时三堂茶话，那么就用白这些面对收银时间呢，算了。这明年去新欧了，就跟国内那里的车这里把老旧听我忙，我只阳光阳光在这股票下，但看那个今晚听这股票票庄那收银，看意思呢，看那个把老旧阳光阳光。 估计股票对咱们新庄忙不及给车子给不了嘛，就给车子通过民都车子，可能也关系是哪种呢？俄罗斯的车子哪里呀？想给送些的，那可能给超过这些拿不了它，穷大车子啦，等级拿不了，并不拿不了，可能创业票价估数了，估数了，他这也不吃了，那四十岁算呀，大概也不吃了，那算那下了。 老弟呢？那赶紧微笑，是不谈听呢？那成名了，学而是不生着困难，你个人呢？人数强大，忙他孤僻啥了？某天呢？俺去现场成功是失败之母，学员困难，给俺看不上，给俺创业，过来他送学员，俺里真的要还讲起，搞不有送那些，你真的也不难办，因为呢，他欠那学员。
3: 老西藏小子是别神州空间，那作用你少不得了，点没见在那个松雪古镇那的那是天南下。我们昨天给那些南头的，那个你也彻底是别松雪，如果需要南头的，其实给那个点没见在那个松雪塘塘那些松雪西边，如果那个光明那是八三给那些南里那说了南了。
0: 当然，老下面那种很多人呢，给那看完有西边松雪的，在南头。

0: 那
1: 什么
0: ？No， 看不上，才能还凶呢。
1: 那古鲁这个。
0: 那是你姥姥，古鲁那什么？天气呢？哪天呢？
1: 给了多个洗个汤的给。
0: 那是你姥姥哦，古鲁那天里在那里凶呢？这，看人卡巴有洗呗，送些礼送皮子有呢。
1: 看人卡巴有洗呗，送些尿布巾呢，糖豆呢，尿布巾的这个东西，杨姐说了些，给记得么来着？
0: 嗯嗯。
1: ऐसे के तो तो चला निजन सुन ले तू ने ने तो ले ती ती ने या तो या तो यों तो हिमें तो शुजु के
0: लेस तो से ना ला
1: ते के ला ते दान से ची पई शुपी पम बंजे नम ला पे ये ला ते ये के जी कुरी